बड़े चिटोल बराते लंश पश जी लंश पश मजेदार भाई मजेदार बिल्कुल जी गुल रुखसार भाई और सिर्फ रातदा हुआ है जी आवाज में पकम रेडियो ओके दे जगचे लिंक लड़ीर शिकल कम शे कलयो शिकल द्वशे

डबरी वाला। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह इब्राहिम से प्योर गले देखा दुकान टूली शमसे निमा दिखे।

hi, good morning, bro. How are you? Welcome to the show. I'm Maheen. Hi, good morning to Maheen. How are you? आपको भी वेलकम जी. मोहित मरवत फ्रॉम कोटकट. मोहित ढेर ने शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरा सलाम. आपका शो बहुत नाइस है, आपका प्रोडक्ट बहुत नाइस है. माशाल्लाह महमूद खान फ्रॉम वन ढेर जातमन ने शुक्रिया महमूद भाई. वर्सरा वर्सरा शिकम देता सो बिल्कुल जी इंतहा आपको लिखी सीधे कम सी जिम्मेवारी भी और कम कम सी जुन जिम्मेवारी था उसता वागी बिल्कुल जी आप बिल्कुल जिम्मेवारी बस था उसता अकलम चे रिजल्ट दरको जबा स्तासो जिम्मेवारी मा जबा ताउसे द प्रोडक्ट जिम्मेवारी मा

घर का मुंगवरता गड्डी रूप में धन के संग पसंद गद्दड़ दम गद्दड़ दम गद्दड़ दम गद्दड़ दम गद्दड़ दम गद्दड़ दम गद्दड़ दम

अच्छा जी सुरे टांग वाला इंशाल्लाह एक बेहतरीन प्रोडक्ट वाली बेहतरीन रिजल्ट वाली यो द कुदरती जड़ू बुटना तैयार कृषि प्रोडक्ट वाली जमुंग देश ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के देश प्रोडक्ट शामिल ले और देर शुवाला के चिकम दे कुदरती जड़ी बूटी हर

अच्छा, तो इसी तरह से जो मैं बात अर्ज कर रहा था कि जी जो इनके दरमियान मसाइल हैं, यानी वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो गैप है, जब वो कम हो जाएगा, जब बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को अपने दोस्त की तरह समझेंगे, तो उनको जो भी मसला दरपेश होगा तो वो फिल फोर आके अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, और उससे फिर आप वक्ती तौर पे तो हो सकता है पेरेंट्स को उनकी कोई हरकत बुरी लगे, लेकिन वो जो दूर देश उसका खतरा होता है और फिर वही बच्चे के लिए जो मसाइल पैदा होते हैं और उन मसाइल से फिर वो बात बहुत आगे निकल जाती है, बेइज्जती का सबब बन जाती है, नुकसान का सबब बन जाती है, तो फिर इंसान जो है वो फिर कुछ कर नहीं सकता, वो हाथ मलते रह जाता है। तो इसलिए अपने बच्चों को इतना एतमाद मिले, अपने बच्चों के साथ इस तरह से रवैया रखें, अपने बच्चों को इस तरह से ग्रोन करें, उनकी इस तरह से तरबियत करें कि कल कल अगर उनके साथ कोई बुरा हो रहा है, कोई टीचर स्कूल में उनको हरासा कर रहा है, कोई दोस्त उनको हरासा कर रहा है, कोई गली मोहल्ले में चचा उसको हरासा कर रहा है, कोई फुफ्फड़ उसको हरासा कर रहा है, कोई कजन उसको हरासा कर रहा है, कोई बड़े रिश्ते में अगर कोई शख्स उनको हरासा कर रहा है, तो वो बच्चा फौरन आके अपने वालिदैन को बता सके कि इसने आज मुझे इस तरह से करने की कोशिश की, मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। उसका फायदा ये होगा कि आपका बच्चा कल का ना बड़े मसले से बच जाएगा। और जिस तरह से हम देखते हैं कि जी 5 साल की बच्ची की, 6 साल की बच्ची की, 3 साल की बच्ची की, इवन के 18 माह की बच्ची की लाश जो है वो दरिंदगी का सामना करके लाश जो है झाड़ियों से मिलती है, तो इस तरह अपने बच्चों को बचाएं इस दरिंदा जो दरिंदगी भरा जो जमाना है, ये जो माशरा है जिसमें हर तरफ दरिंदे घूम रहे हैं, इस माशरे में हमें अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना है, और अगर हम अपने बच्चों का ख्याल ना रख पाए तो बर्बादी आपका सबब आपके इंतजार कर रही है। और कल कला आज जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जी 6 साल का बच्चा, 6 साल की बच्ची, 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 2 साल की बच्ची, वो उसको जो है ना 4-4, 5-5 लड़कों ने दरिंदगी का निशाना बना के किसी को कुएं में फेंक दिया, किसी को फसलों में फेंक दिया, किसी को जमीन के नीचे गाड़ दिया, किसी को कहीं किसी की लाश, कहीं किसी की लाश कहीं। अगर हमने अभी इस पे आवाज ना उठाई, अगर हमने खुद को अभी से एजुकेट ना किया, तो जहां जिस टांक में 21 साल का नौजवान लड़का दूसरे मर्द से महफूज नहीं है, तो वहां पे आपका 4-5-6 साल का बच्चा महफूज कैसे होगा। अगर 21 साल का जो नौजवान लड़का है वो बेचारा इस तकलीफ और परेशानी से दोचार है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, फौरन ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करवाएं, फौरन थाने जाएं, पुलिस से राबता करें, और ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को किसी भी सूरत माफ नहीं करना, क्योंकि इनकी जो माफी है, इनको छुपा के जो रखना है, ये बजाते खुद एक शदीद किस्म का जुर्म। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो मकसद यह है, उस गैप को खत्म करना, उस जो जो जो जो इस मास्टर में पनपती बुराइयां हैं उनको खत्म करना है। आप एक दफा फिर से हमारा रब्ता नंबर नोट कर लें, अगर इस तरह का कोई मसला आपको दरपेश है, मैं खुबाब अली एडवोकेट कचहरी डिस्ट्रिक्ट टांक में मौजूद होता हूं, आप आए, मैं आपकी वकालत करूंगा और इस तरह के मसाइल में मुफ्त वकालत करूंगा, मजलूम की। ऐसे मजलूम लोग जो इस तरह के मसाइल से दोचार हैं, जिनको इस तरह के दरिंदे नोच रहे हैं, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, बच्चा है, बच्ची है, और वो बेचारे डर के मारे खामोश हैं, कुछ कह नहीं सकते, तो आप आए, इंशाल्लाह खुबाब अली आरा एडवोकेट आपकी आवाज बनेगा और आपको इस दरिंदगी से बचाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप रब्ता नंबर फिर से नोट करें, 09635114888, 09635114888, 09635114888। इस नंबर पर रब्ता करके आपको अगर कोई मसला दरपेश है तो हम हाजिर हैं आपकी खिदमत।

टाइम पे क्या हाल है? सब ठीक है भाई। मेरे अबू आज बाजार गए हैं और मैंने अपने अबू से नो टेंशन मीटर मसीह फेस वॉश मंगवाया है। आई एम मेरे मन में हाथ पूरा खुशहाल है। बहरहाल बिठी नहीं, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम भाई जाना भगवान शो और डेरे मन से मौका देसी हो जहान मनन और जिनब गेंडे पूर डेरे मन से थैंक यू। और अच्छा हां जी और खेन वकार वी डेरे मन थैंक यू वे हाँ बद पशो दे समझना शिकाश में वाह वाह देर खबर अरे मन से एस एम एस

प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है। ओडीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है, स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342 311 2292 पर

0: जो लेकर आते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन स्टेशन के ऊपर हमारा प्रोग्राम होता है, क्योंकि जनाब हम आपको बावर कराना चाहते हैं कि आपके इलाके में अगर कोई कंपनी जो आपकी हमदर्द है या आपके बारे में सबसे ज्यादा जिस कंपनी ने सोचा है तो वो केसर नेचुरल पाकिस्तान है कि जनाब जिसने आप लोगों के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट्स बना दिए हैं और अब टाइम ही हमें नहीं मिलता कि सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम बात कर सकें, क्योंकि 30 से ज्यादा केसर नेचुरल पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हो गई हैं और हर प्रोडक्ट आपकी जरूरत की है, लेकिन हमारे पास वक्त कम होता है तो बाज़ुकात हम उन्हीं प्रोडक्ट्स का जिक्र बार बार कर रहे होते हैं जो प्रोडक्ट आप लोगों को बेतहाशा पसंद आ रही होती है। जैसे जब भी हम शो करते हैं तो जनाब कॉल आती है ताकत प्लस ताकत प्लस ताकत प्लस हाजमा कंट्रोल वेट कम पेट कम जनाब शिफाय दर्द या फिर ग्लूटा क्रीम नाइट क्रीम, इसी तरीके से केसर नेचुरल पाकिस्तान के ढेर सारे प्रोडक्ट हैं और हम वो कंपनी है जो कुदरत के बहुत करीब ये कंपनी है। अभी जो हम आप लोगों के लिए एक मूवी बना रहे हैं केसर की दस्तरस के नाम से, आपको यूट्यूब के ऊपर ट्रेलर्स अभी मिल जाएंगे, लेकिन उस कहानी का जो नाम हमने रखा है ना दस्तरस, और हमारा स्लोगन है कि कुदरत के खजाने आपकी दस्तरस में, आपकी रसाई में, आपकी पहुंच में, तो उस मूवी के अंदर हम आपको यही बावर कराने की कोशिश करेंगे और यही दिखाना चाहते हैं आपको कि केसन किस तरीके से कुदरत के कितने करीब है, नेचर के कितने करीब है और आप लोगों के लिए कितने नेचुरल प्रोडक्ट पेश कर रही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त एक क्रीम जो छाई हुई है और लोग जिस क्रीम के पीछे भाग रहे हैं वो जाफरानी फार्मूला क्रीम है, लोग ले रहे हैं धड़ाधड़ ले रहे हैं, लेकिन ये तो अभी की बात है, हफ्ता डेढ़ हफ्ते की बात है, हमने 3 साल 2.5 साल पहले आपको जाफरानी फार्मूला क्रीम दी थी। तो इस बात से क्या जाहिर होता है, इस चीज से ये बात जाहिर होती है कि जिस फार्मूले के ऊपर अब कंपनियां पहुंची हैं, ये कंपनी आपकी जो नेचुरल कंपनी है 3 साल पहले पहुंची हुई है। हमारे माहिरीन को जाफरान के बारे में 3 साल पहले पता चल गया था कि इसको अगर हम साबुन में साबुन बनाकर आपको दें या क्रीम आपको बनाकर दें तो आपको कितने फायदे होंगे। ठीक है जनाब, तो हम इकलौते मार्केट के अंदर मौजूद थे जाफरानी क्रीम के हवाले से, कोई नहीं था, अभी बहुत सारी आ गई हैं। तो कहने का मकसद ये कि हम पायनियर हैं, हमने सबसे पहले इस चीज को जो है ईजाद किया और आप लोगों के लिए लेकर आए कि भाई खुदारा अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो जाफरान से बनी हो। ठीक है, अभी हमारा जाफरानी साबुन आपको हर जगह शॉर्ट मिलेगा, कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रीमें तो बहुत सारी कंपनियों ने बना ली है, जाफरानी साबुन किसी के पास नहीं है। ठीक है जी ना, जाफरानी साबुन किसी कंपनी का नहीं है, वो इकलौती केसन के पास है और हम पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि हर जगह से हर तरफ से, क्योंकि लोग मोस्टली जाफरानी क्रीमें लगा रहे हैं तो साथ में जाफरानी साबुन भी लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जाफरानी क्रीम जो है ना उसके अंदर सिर्फ जाफरान होता है। ठीक है जी ना, उसके अंदर हल्दी और संदल एड नहीं किया जा सकता, संदल का ऑयल जरूर ऐड किया जा सकता है लेकिन फिजिकली उसको ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो संदल होता है ना ये लकड़ी होती है बेसिकली। ठीक है ना, और लकड़ी भूरा होता है, लकड़ी होती है तो ये बेसिकली क्या होती है, ये पानी के अंदर हल भी नहीं होती, क्रीम के अंदर हल भी नहीं होती, तो संदल को क्रीम के अंदर ऐड करना फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये संदल साबुन के अंदर आ सकता है। जिस तरह आप लोगों के पास हमारा ये जाफरानी साबुन है, आप यकीन कीजिए कि ये 250 रुपए का साबुन है लेकिन क्रीम से ज्यादा ये काम करता है। आप जब रेगुलर इस साबुन को इस्तेमाल करते हैं, केसन नेचुरल पाकिस्तान का जो जाफरानी साबुन है, भला वो आपको कौन कौन से फायदे पहुंचाता है ये भी आपको साथ साथ में हम बताएंगे, ये भी आपको जरूर बताएंगे।
1: एक बिरद है दम दम अली अली,
2: सखी लाल कलंदर मस्त मस्त,
3: सखी लाल कलंदर मस्त मस्त,
2: सखी लाल कलंदर मस्त मस्त,
3: सखी लाल कलंदर मस्त मस्त,
4: झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त,
3: कलंदर मस्त मस्त दम मस्त, कलंदर मस्त मस्त दम मस्त, कलंदर मस्त मस्त दम मस्त, कलंदर मस्त मस्त।
0: जनाब जाफरान तो डेफिनेटली एक एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन को निखारता भी है, चमक भी लेकर आता है, झुर्रियों को भी खत्म करता है, स्किन के ऊपर जो है एक तह भी चढ़ाता है हिफाजत की, जिस वजह से इसे गार्ड जो है इंग्रेडिएंट भी कहा जाता है, स्किन गार्ड भी इसको कहा जाता है, स्किन की हिफाजत करने वाला भी है। आजकल के दौर के अंदर जो क्रीम्स आ चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को पतला कर देती हैं, आपकी स्किन को मुतासर करती हैं, क्योंकि फास्ट उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स केमिकल्स को ऐड किया जाता है। सो ये एक नेचुरल वे है, जाफरान से बना हुआ क्रीम या जाफरान से बना हुआ साबन, अकेसन के ये साबन भी मौजूद है, जाफरानी साबन 250 रुपए का है और जाफरानी क्रीम 320 रुपए की है। केसन की जो जाफरानी क्रीम है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो नाइट क्रीम है, ठीक है जनाब, जाफरानी साबन के ऊपर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है जाफरानी साबन, जाफरान भी बना हुआ है, हल्दी भी बनी हुई है साथ में, और साथ में उसके जो है संदल की भी लकड़ी पड़ी हुई है, तो वो साफ पर, लेकिन क्रीम के ऊपर डिजाइन नहीं है। क्रीम हमारी नाइट क्रीम जो है वो जाफरानी क्रीम है। जैसे आप हमारी क्रीम को ओपन करेंगे तो जनाब क्रीम में जाफरान पड़ा होगा, उसी जाफरान को आपने खुद से क्रीम के अंदर मिक्स करना है, और फिर जब क्रीम का कलर तकरीबन पीला हो जाए, ठीक है जनाब, तकरीबन पीला हो जाए, जैसे कि हल्दी का कलर होता है थोड़ा सा लाइट, क्रीम से थोड़ा सा ज्यादा पीला हो जाए, क्रीम कलर तो लाइट होता है लेकिन जो पीला कलर हो जाए, तो आपने इस क्रीम का इस्तेमाल शुरू कर देना है साबन के साथ। बहुत बढ़िया ये स्किन को साफ करने का फार्मूला है, और मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, ये जाफरान, ये संदल, ये हल्दी, ये आम लोगों की अप्रोच की चीजें नहीं थी, ये बादशाह अपने वक्त में, और सबसे पहले जलालुद्दीन अकबर मुगले आजम जो थे, उनको बड़ी बड़ी लगी रहती थी अपने चेहरे की। वो कहते थे जिस तरह मेरा रोब है, मेरे चेहरे की खूबसूरती भी इस तरह होनी चाहिए। तो उस वक्त की जो हुकमा थे, उन्होंने कहा था कि भाई आप अपनी रोजमर्रा लाइफ के अंदर जाफरान, संदल और हल्दी का इस्तेमाल करें। तो फर्स्ट टाइम जलालुद्दीन अकबर ने, मुगल आजम जो थे, उन्होंने जो है वो जाफरानी हमाम बनाए थे, ठीक है जनाब, जिनके अंदर जाफरान के सारे प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ तरीके से हकीम बना कर देते थे, पीस कर देते थे। उस वक्त तो साबुनों का इतना दौर नहीं था, क्रीमें इतनी नहीं थी, ये चीजें नहीं थी, तो वो नेचुरल तरीके के ऊपर दूध के अंदर शामिल करके, ठीक है जनाब, शहद के अंदर शामिल करके अपनी स्किन के ऊपर इसको लेकर जाते थे और इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी एडवांस दुनिया आ चुकी है, तो जनाब इसमें बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, जैसे कि आप लोगों के पास फेस वॉश भी मौजूद हैं, साबुन भी मौजूद हैं, क्रीमें भी मौजूद हैं, तो आप इसके असरात को मुंतकिल कर सकते हैं अपनी स्किन के अंदर। जी जनाब, केसन के जाफरानी मॉडल्स इस्तेमाल करके, केसन की जाफरानी सोप आप लोगों के लिए मौजूद है, एंटी एजिंग भी है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है, चेहरे के ऊपर गैर जरूरी बालों की खवातीन, ऐसी खवातीन जिनको गैर जरूरी बाल जिनके चेहरे के ऊपर आते हैं, भी भाई की बात माने और केसन जाफरानी क्रीम और जाफरानी साबुन को इस्तेमाल करें, और आपके गैर जरूरी बाल जो है वो आपके चेहरे से बिल्कुल जी खत्म हो जाएंगे। जी जनाब, तो केसन नेचुरल पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोडक्ट, और उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा ये जाफरानी फार्मूला है, ठीक है जनाब, इस वक्त ट्रेंडिंग फार्मूला है, और मैक्सिमम लोग जिस चीज को आजकल अपनी स्किन के रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में, टिकटॉक के ऊपर, ठीक है जनाब, इंटरनेट के ऊपर, तो सबसे ज्यादा जो चीज इस वक्त स्किन के लिए सेल आउट हो रही है वो है जो है जाफरानी फार्मूला। तो केसन ने बहुत अरसे पहले आप लोगों को ये फार्मूला प्रोवाइड कर दिया है। आप मुझे डेर इस्माइल खान में सुन रहे हैं, या मुझे आप टांक में सुन रहे हैं, आपके इलाके में मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर हमारे ये प्रोडक्ट, केसन के सारे प्रोडक्ट बाशमूल ये जाफरानी साबन और जाफरानी क्रीम मौजूद है, खरीदिए, इस्तेमाल कीजिए, और खुद को उन लोगों के अंदर ले जाइए जिन्हें हम ढेर सारा प्यारा कहते हैं।

समझ आने पे इतना रिपेयर करेंदा है हड्डी को, इतना रिपेयर करेंदा है गोश्त को, इतनी ताकत देंदा है गोश्त को कि यकीन करो वो बंदा जरा 5 किलो बांह को नहीं चाह सकता। ਉਹ ਹੁਣ ਆਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਕਿਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਾਹ ਸਕਦਾ।

0: यानी कि इतना मैं कोई दर्द हूं, पता ही कोनी कि यार इतना मेरे को पहले इतना दर्द आई कोनी दे विच बांह दे विच के मैं वजन नम जा सकदा।
1: बिल्कुल ये सही है बिल्कुल, क्योंकि मेरा खुद गवांडी दे बांह का मसला आई हूं जो तुसा तेल इस्तेमाल कीते वन मैं डॉक्टर ने बहुत फिर आराम नहीं आंदा शाल होंदी दर्द होंदा ही ये तेल इस्तेमाल करण नाल 4-5 बार कीते फुल आराम आ गए फुल दर्द कशाय कोनी
0: कशाय कोनी बिल्कुल। तो केसन तो को जी ए जी मुलाजिम भाई जरे रणवाल को सको कॉल करने पे आंदे न तो ओ माशाल्लाह कितने गाक नो सारा रिकॉर्ड के उन दुकानदार के ना सको वापस सामान नहीं भेजा के भाई चावन जो नहीं बिकदे है जी
1: बिल्कुल
0: नहीं होता
1: ये गाल की थी ना जो पहली दफा ही ना मैं जो रखे था भाई कोई दिया थे चलती नहीं मैं पहले रखने दी दे रहे मैं
0: हाँ रखने दी दे रहे बात थोड़े बहुत सारा प्रोग्राम सुन दे होवेन सारे गालियां सुन दे होवेन ठीक है जनाब तो जरूर घिनसेन क्योंकि सारे प्रोडक्ट जो रहे ये लोगों की जरूरत ही जरूरत
1: तो जी जफरानी साहब ने जो लेते थे ये सफाई दे की मिसाल बंदे को खूबसूरती के वास्ते एक तरीक के ये चौकीदार रही है आग बस चौकीदार सारे सारे मिला ना जाले मैं चौकीदार गेट से बिहार देता
0: ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਵੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੋ ਦਫਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਕਦਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਚੋ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਫਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇਨੇ ਪਏ ਔਰ ਜ਼ਰਬਤ ਖਾਨ ਕੋ ਖਤਮ ਹੈ ਸਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕੋ ਖਤਮ ਹੈ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੋ ਮਾਲ ਮਿਲ ਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਂਕੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਨੇ ਪੈਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
1: ਸਰਦੀਆਂ
0: ਜਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਸੋ ਤੇ ਵੱਧ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਮਲਿਸੋ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਣ ਇਸ ਜ਼ਫਰਾਨੀ ਸਾਬਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਨ ਵਜੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕੋ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਆਮ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਬਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਬਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕੋ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੇ ਨੇ ਸਕਿਨ ਕੋ ਸਖਤ ਕਰੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਇਹ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਾਬਣ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਕੋ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖੇ ਸੀ ਰੰਗਤ ਕੋ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਸੀ ਛਾਇਆ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰੇ ਸੀ ਦਾਣਾ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰੇ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚਿਹਰੇ ਖਤਮ ਥੇ ਸਨ ਸਾਦਿਕ ਬਿਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਭੁੱਲ ਵੈਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਬਣ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਬਣ ਸ਼ੈਂਪੂ ਛੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਛੋੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਸਰ ਨਾਲ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਹੋਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਲੋਕ ਆਖਸਨ ਸਾਦਿਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕ ਆਦੇ ਹੋਸਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਦਿਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਸਾਥ ਕੇਸਨ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਹੈ ये पंजाब साइड के ऊपर 6वां मील की तरफ रहते हैं शायद इस वक्त सुन रहे होंगे तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि 6 पुश्तें उनकी जो है वो हकीम है तो 6ठी पुश्त का उसका बेटा है हफीज हकीम हफीज उसके नाम है वो मुझसे कुछ सामान लेके गया पिछले महीने उसने कहा मैंने बड़ा तारीफ सुनी है आपकी कंपनी की मेरा अबू आपका प्रोग्राम सुनते हैं वो बड़े गुनगाते हैं यार इनका ये चीज जबरदस्त है ये तो वो अपनी सारी चीजें शिफाए दर्द वेट कम वेट लॉस ऑयल शैम्पू साबन क्रीमें हर चीजें लेकर गया कह रहा मैंने खुद इस्तेमाल करूंगा पहले 8-10 हजार का उसका बिल बना अब कल कॉल किया है कि भाई मुझे ना तकरीबन 30-40 हजार का सामान आपका चाहिए केसन का और हमें कुछ रेट भी दें डॉक्टरों वाले हकीमों वाले और दूसरी बात उसने कहा मैंने कहा ना शैम्पू नहीं है अब बात सुनिएगा अल्लाह को जान देनी है उसने कहा मैंने कहा शैम्पू अभी नहीं है हमारे साथ थोड़ा सा बॉटल का इश्यू चल रहा है उसने कहा भाई शापर में मिल सकता है अल्लाह को जान देनी है ये उसके वर्ड थे कहते मुझे लोगों ने इतना तंग किया हुआ कि वही शैम्पू चाहिए कहते शापर में दे सकते हैं शापर में दे दें हमें खैर बोतलें हम उनके पास पड़ी हुई उनमें डाल के हम उनको शापर में दे देंगे ये वो चीज है केसन शैम्पू 13 अज़ा से हर कंपनी जो शैम्पू बनाती है उसके अंदर 4 से 5 चीजें होती हैं केसन शैम्पू के अंदर 13 चीजें हैं लैब करवा सकते हैं आप जी जनाब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हें हम मौका दे रहे हैं इस वक्त ये हैं जनाब खलील के छोटे भाई जलील या जलील के बड़े भाई खलील हेलो हेलो, आवाज गुम हो गई है जनाब। या तो खलील के बड़े भाई हैं जलील, ठीक है जनाब, या जलील के छोटे भाई हैं खलील, कुछ है जरूर। अब ये कॉल कर रहे कि हमें तो पता चल जाएगा। आई थिंक जलील भाई थे, अरबी महल वाले, अरबी खुशबू महल वाले। और ये बहुत जल्द केसन, आप भी देखो जलील भाई सुन रहे होंगे, है जनाब। यार लोग कितने परेशान हैं, लोगों को चीजें नहीं मिल रही। कोई बंदा टॉक में सुन रहा है जिसके पास भाई 8-10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, इन्वेस्ट करो केसन के ऊपर यार। सारे प्रोडक्ट मंगवा लो एक साथ, दो दो तीन तीन चार चार कार्टन मंगवा लो। लोग बेचारे घूम रहे हैं, उनको चीजें नहीं मिल रही है। सरबत खान तो हमें ऑर्डर देता है 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, इससे ज्यादा तो ऑर्डर नहीं आता उनका। तो कोई भाई फाइनेंशियली गुड बंदा हमें सुन रहा है तो भाई रब्ता करें हमसे, केसन भाई टांक लोगों को चाहिए और बहुत अच्छी मिकदार में लोगों को चाहिए, तो भाई हमसे रब्ता करें और बड़ा सेटअप बनाए टांक के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कैसे भाई?
0: सोनिया आप भी आ गई हमारे साथ, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
2: शुक्र खान से आप कहे थे डेरा से कोई काम नहीं कर रहा।
0: डेरा वाले बेवफा है, हमने छोड़ दिया उनको अपने हाल पर, छोड़ दिया हमने। आज आज पहाड़पुर से एक फैमिली आई हुई थी पहाड़पुर से, तो वो कह रही थी कि सोनिया आप ही आएंगी, मेरे को मुझे क्या पता। तो वो फैमिली आई थी, कहती है कि सोनिया आप ही नहीं आएंगे। नजर हसन भाई जी उनके साथ उनकी फैमिली आई हुई थी, सामान लेने के लिए हुए थे, वो तो कह रहे थे कि सोनिया आप ही आ जाएंगी। मैंने कहा आज है तो इतवार, आती तो रहती है वैसे इतवार को, आज पता नहीं आती है या नहीं आती है। लेकिन लोग आपके फैन बन गए, देखे ना, आपकी सिर्फ वॉइस सुनकर ना लोग ये आपने पहली दफा कॉल किया तो मैंने ले लिया आपकी कॉल।
2: नहीं ये तीसरी चौथी दफा है।
0: अच्छा नहीं, मेरे पास अभी शो हो रही है, पता हो आपको?
2: बिल्कुल हाँ, वो कारण कर दी थी ना टाक मार कर। माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का कि बहुत जो एक बात कह रही है ना कि भी मुतमईन हो गए। पहले मैं खुद कॉल नहीं करती क्योंकि उनका पहले हक भी है, वो कारोबार भी है ना हमारा, तो दुकानदार वो कॉल करते हैं।
0: हाँ,
2: तो माइक का कारोबार बढ़े तो फैनों को तो खुशी होती है ना।
0: हाँ बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह केसन को अब बेतहाशा मोहब्बत मिल रही है टांग के लोगों से, चीजें पूरी नहीं हो रही अब हमारी वहाँ पर, पता हो आपको?
2: तो इंशाल्लाह, उनका मुझे मालूम नहीं है, और जब मैं पहाड़पुर जाऊंगी तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो नानिहाल कभी कभी जाती हूँ ना।
0: अच्छा, वो कच्ची काठगढ़ से फैमिली है, कच्ची काठगढ़ से नजर हसन भाई,
2: वो पास कर दिया, उनको बहुत बहुत सुन रहे हो तो सलाम हो मेरी तरफ से ना उनको सबको।
0: ठीक है,
2: उनके मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जफरानी साबन है ये जफरानी के लिए माशाल्लाह, और जो आजकल आ रही है भाई बाजार में तो वो मेरा भतीजा हंस पड़ा, कहता है कि ये पागल है जो ले आ गया 400 रुपए
0: 400 रुपए के अंदर आधे किलो की क्रीम मिल सकती है आपको, खुद अकल है?
2: नहीं नहीं, वो इतने हंसते ना वो पागल हो गया, लोट पोट हो गया।
0: अपनी क्रीम के अंदर 3 या 2 तिनके डाल के देते हैं और फिर भी जो है ना जेब पर भारी होती है।
2: उन्होंने वो बताया है रेट भी जफरान का, उन्होंने पागल है ये ले आए है।
0: लेकिन असल बात क्या है, अब ट्रेंड कितना चल चुका है, हमने आपको तो सुन रही, हम 3 साल से जाफरानी करीम हमने लॉन्च की हुई है, और आपको पता है कि सबसे पहले देखिए कि हमारे माहरीन कितना फास्ट सोचते हैं कि भाई आपको क्या चीज चाहिए, और हम आपको 3 साल पहले लेकर आए, लोग अब लॉन्च कर रहे हैं उस चीज को, तो और हमें एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा या उनको ज्यादा होगा, पहले ये बताएं आप।
2: हाँ जी बिल्कुल, ये नेचुरल भी है ना, मतलब नजर भी आ रही है और
0: हैवी से
2: और जो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स वो जो मालूमात के लिए मूवी बनी है तो वो मैं जरूर देखूंगी। मैंने उसकी बच्चों से कहा रिसर्च किया तो वो कह रहे मम्मी अभी नहीं आई।
0: हाँ अभी नहीं आई, बस उसके ट्रेलर हमेशा
2: मुझे कहते हैं ट्रेशन वाली मम्मी,
0: तो वो बहुत मजा आएगा। आप बच्चों को दिखाना है आपने कि ये हमारी कंपनी है, ठीक हो गया? सब सुनने वालों को सलाम जनाब। दस्तरस मूवी केसन की जरूर देखिएगा, आपको केसन की पूरी कहानी नजर आएगी उसके अंदर। उसमें हमने दिखाया है कि एक जासूस उतरता है जंगल के अंदर, उसे हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है, और वो ये जानना चाहते हैं कि यार ये कंपनी इतनी पॉपुलर क्यों है, इसकी हर एक फार्मूला क्यों इतना लोगों को भाता है। तो वो जासूस आता है जनाब केसन की लैब की तरफ और चोरी छुपे वो फार्मूले चोरी करना चाहता है केसन के, कि केसन का ताकत प्लस किस तरह बनता है, केसन का वेट कम, केसन का शिफाय दर्द, ये सारे किसी की तरफ से उसको भेजा जाता है, लेकिन फिर होता क्या है ये आगे जाके आपको पता चलेगा, उस जासूस के साथ क्या होता है और वो जासूस अपनी आंखों से क्या क्या देखता है जब केसन की लैब के अंदर वो दाखिल होता है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उन्हें मौका देते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल है?
0: जलील के बड़े भाई खलील या खलील के छोटे भाई जलील, भले ये बताएं।
3: खलील के छोटे भाई जलील का गर्म काल कर गई थी।
0: कैसे हैं मोहतरम, ठीक हैं आप?
3: अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है। एक दो आपका जो है ना पावर प्लस है या क्या नाम है,
0: ताकत प्लस, ताकत प्लस,
3: ताकत प्लस जो है ना नहीं मिल रहा था। हमने तो अभी तक रखा नहीं दुकान पे, लेकिन लोगों का जहन बना रहे हैं। अच्छा, खान के पास भी नहीं मिला, नसीम के पास भी नहीं मिला।
0: अच्छा बस अभी शॉर्ट है, इसका मतलब ये है कि बस हर पूरा जितना हमने भेजा था खत्म हो गया टांक के अंदर, समझ आ गई मुझे अब।
3: हाँ, और दूसरी बात ये है खलील भाई कि मेरा नंबर आपके पास नोट कर लो मेरे साथ, तो प्रोग्राम के बाद जरा रब्ता करना इंशाल्लाह।
0: ठीक है, मैं आपका ये नंबर नोट कर रहा हूँ जनाब, और आपको रब्ता करते हैं इंशाल्लाह, और फिर आपके साथ गपशप लगाते हैं। ठीक है जलील भाई,
3: ठीक है, अल्लाह खुश रखे। इंतजाम दीन जो बात कर रहा था पठानकोट, तो हमारा गाँव है ना पठानकोट।
0: अच्छा जी, ठीक है,
3: हम बेसिकली पठानकोट के हैं।
0: ठीक है,
3: इंशाल्लाह जहन बना रहे हैं लोगों का टांग में, अभी इधर काम है बहुत कम केसन का, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद की हुई है कि टांग के सब लोगों तक केसन को पहुंचाए इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट्स हैं वहाँ पर तो हमारा सामान रुक भी नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जाता है फौरन अगले हफ्ते ऑर्डर आ जाता है, तो लोगों का माइंड बहुत सारा बन गया है आप लोगों के फीडबैक से कि भाई कितने इफेक्टिवली रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को हमारी प्रोडक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह।
3: नहीं नहीं इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा है, और जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंशाल्लाह खुश है सब।
0: हाँ, अभी सर्दियों में आप जब हमारे साबुन इस्तेमाल करेंगे ना, हमारे साबुन, ये मिल्की, ये जाफरानी, ये राइस, आप यकीन करें कि हैरान हो जाएंगे कि यार सारी जिंदगी तो हम अपने चेहरे को ऐसे खुश कर करके बिगाड़ते रहे हैं साबुनों, बाजार वाले साबुन खरीद के, ये जो खुशबू वाले साबुन मिलते हैं, केसन के साबुन इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और फील आएगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई,
3: खलील भाई आपके साबुन जो है ना हमारे टांग की मिट्टी के साथ बहुत इंशाल्लाह सही काम देंगे।
0: हाँ, ये बहुत ज्यादा हैंड क्राफ्टेड सोप
3: है, उसकी भी ज्यादा है ना, मिट्टी भी ज्यादा होती है टांग में हमारे,
0: इस साबुन हमारे साबुनों के इस्तेमाल के बाद आपको खुश्की नहीं होगी, नो मोर
3: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जलील भाई,
3: सब सुनने वालों को सलाम,
0: सब सुनने वालों को सलाम। जलील भाई थे हमारे साथ, खलील के बड़े भाई।

लेकिन अब ये डेयर इस्माइल खान की, और हमारे अपना जो सेटअप है, यू आर ब्लेसिंग पीपल, आपकी अपनी कंपनी, आपका अपना आउटलेट, जी बिल्कुल, आप हमारे पास ड्रैक आ सकते हैं, और ड्रैक आने के आपको बड़े फायदे होते हैं, बाजार से आपको सस्ती चीज मिलती है, कूपन भी आपको मिलते हैं। तो जनाब मियां कमर्शियल मार्केट की बैक साइड के ऊपर है अकबर प्लाजा, और अकबर प्लाजा में बिल्कुल फ्रंट के ऊपर है केसन, यानी कि जैसे दाखिल होंगे तो सामने सामने केसन शॉप का बोर्ड लगा हुआ है, प्यारा लगना तो सबका हक है।

ऑप्शन। अब इन पॉइंट्स के ऊपर आप हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा और कहां कहां। जी जनाब, ट्रांक के अंदर पहले तो हम आपको बताते हैं कि मंसूर जनरल स्टोर सदाम प्लाजा के अंदर है, ठीक है जनाब। इसके अलावा दुकानों के आपने नोट करने हैं, ये अलबदर मार्केट के सामने बिल्कुल है, अलबदर मार्केट के बिल्कुल सामने है वहीद जनरल स्टोर, वहीद जनरल स्टोर वहां पर जाएंगे आप। अच्छा जी, जब एक नई कंपनी की प्रमोशन या डिमांड एकदम से बढ़ती है तो थोड़ा सा आप लोगों ने सपोर्ट करनी है, क्योंकि दुकानदार हजरत तब तक कोई चीज नहीं रखते हैं जब तक तीन चार लोग उसके पास ना चले जाएं। तो अगर आपको एक जगह नहीं मिल रही तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जनाब। आपने जाना है, बार बार जाना है, और यही दुकानदार फिर मजबूर होते हैं प्रोडक्ट रखने के ऊपर। तो अलबदर मार्केट के बिल्कुल सामने है वहीद जनरल स्टोर, वहां पर जा सकते हैं आप, साफी भाई वहां पर होंगे। इसके अलावा मदीना जनरल स्टोर है जनाब सदर प्लाजा।

जनाब। इसके अलावा गरा बलोच के अंदर एक फीमेल हाउस है जनाब, इमरान एंड रमजान जनरल स्टोर, घर के अंदर और घर के बाहर भी आपको इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यासीन वाले कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने है, तो आप यहां से भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। गरा बलोच टांग की मैं बात कर रहा हूं, गरा बलोच टांग के अंदर यासीन वाले कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने है, इमरान एंड रमजान जनरल स्टोर, आप वहां पर जाएंगे तो आपको किसन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की भी दिक्कत का सामना है और आपको हमारे प्रोडक्ट नहीं मिले, नंबर पर आप 3 9 3 6 3 6 0 3 44 9 36 37 6।

0: कहीं।
1: जी जनाब उस्ताद जी, कौन कहता है मुझे उस्ताद जी? स्वीट लॉयल एंड गॉर्जियस दूरे अदन, दूरे अदन नौमी मजबूर फेसबुक लाइव के ऊपर कहते हैं सलाम सर जी, और लिस्नर्स को मेरा सलाम कहिएगा। हो गया सलाम। द यूजर ऑफ ओनली, अच्छा ये जो हमारी दस्तरस मूवी आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर नौमी मजबूर का भी एक करेक्टर है, बहुत फनी करेक्टर है, वो जरूर देखिएगा। द यूजर ऑफ ओनली केसन है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, वेलकम टू शो। और उस्ताद जी मेरे नेक्स्ट अल्फाज जस्ट आपके लिए, शो हमेशा की तरह खूबसूरत है और आपकी आवाज और आपके अल्फाज और अंदाज की कैसे तारीफ करूं। माशाल्लाह आपकी आवाज इतनी मीठी और अल्फाज इतने प्यारे होते हैं, स्किप करने को दिल ही नहीं करता। आपकी आवाज के जादू में दुनिया का सारा शोर उदास लगता है। आपकी बातें इतनी पूरा सर होती हैं कि लगता है अल्लाह ने सारा सुकून आपके अल्फाज में डाल दिया है। ओ माय गॉड,
2: हमने बेपर्दा उसी की जात में देखा।
1: आगे कहती हैं आपकी आवाज में शहद की मिठास है और आपके साथ से हर दिन ईद जैसा लगता है। पता नहीं आप ना होते तो हम कहाँ होते। अरे वाह, कमाल कर दिया लड़की। उस्ताद जी अल्लाह आपका साया हमें हम लिसनर्स पर तादीर सलामत रखे और केसन को ढेरों बुलंदियां और कामयाबियां अता करे। आमीन सुमा आमीन। एंड सोनिया भी के यू है या खान एंड हैप्पी इफ्रा। हैप्पी इफ्रा किधर है भाई, कैसे आप सब? के यू है या शहजादी इरम, आप कहाँ आए हो? आई एम हैप्पी फ्रा, आई रियली मिस यू इन शो। ठीक है, फिर से सैड तो नहीं हो गई है? ठीक है, अब सारा गोल हमें सुन रही है मंदरा कला से। थैंक यू बहन, थैंक यू। सलाम भाई, सलाम खेती है भाई। मैं आयशा खान फ्रॉम मुस्लिम बाजार, कैसे हैं आप भाई? शो नाइस है भाई। क्या आपकी ताकत प्लस से ग्रोथ भी होती है, मींस के कद भी बढ़ता है? जरा एक्सप्लेन कर दें और हम आपका शो डेली सुनते हैं।
2: खुदा को हमने बेपर्दा।
1: जी बहुत ही पेचीदा किस्म का आपका सवाल है। हाइट बढ़ती है या नहीं बढ़ती?
2: कहीं वो नूर बनकर था कहीं।
1: जनाब हाइट बढ़ने का ताल्लुक आपकी बोन्स हेल्थ के साथ होता है। आपके बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ढांचा जब ग्रोथ करता है तो डेफिनेटली आपकी हाइट भी बढ़ती है। अब जब हम बात करते हैं ताकत प्लस की, तो ताकत प्लस बेसिकली दोनों काम करता है। हड्डियों की बीमारियों के लिए बड़ा जबरदस्त है। हड्डियों का दर्द होता हो, हड्डियों की कमजोरी होती हो, सारी ताकत पर चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। तो जहां पर ये मसल मास के ऊपर काम करता है, मसल्स को बढ़ाता है, ग्रोथ करता है, सो बिल्कुल ये आपकी जो हड्डियों की ग्रोथ है उसके ऊपर। लेकिन उसमें शायद मे बी टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो, क्योंकि जो हड्डी की ग्रोथ होती है या हड्डी का टूटना, अगर हड्डी टूट जाए तो वो एक महीने से पहले नहीं जुड़ सकती है। ठीक है जनाब, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हड्डी की ग्रोथ इतनी स्लो होती है कि वो आपस में दो जॉइंट्स मिलते मिलते एक महीना ले लेते हैं, तब जाके वो कहते हैं प्लास्टर आपका खुलता है और आपको कहते हैं कि आप थोड़ी बहुत हरकत करें। तो बिल्कुल इसका किरदार बहुत सारा है, आप इसे ट्राई कीजिए। ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो इससे बनेगी और आपको खूबसूरत जिस्म देखने को मिलेगा। आयशा खान भाई आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, प्लीज इसे सही कीजिएगा। अच्छा जी, नेटवर्क का इशू होता है, क्योंकि ये लिंक के जरिए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं। सो यहाँ पर तो इतने ज्यादा पॉपुलैरिटी केसन के प्रोडक्ट्स की, स्पेशली ताकत प्लस जो प्रोडक्ट है हमारी, हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो अज्जा है वो ताकत से भरपूर है। ठीक है जनाब, जो जड़ी बूटियां हैं, जो इसके अंदर हमने एक फॉर्मुलेशन के अंदर जो चीजें ऐड की हुई हैं, जैसे कि भुने हुए चनों का इस्तेमाल किया गया है, सत्तू का इस्तेमाल किया गया, अश्वगंधा, सफेद मूसली, सतावर का इस्तेमाल किया गया है, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, इन चीजों का इस्तेमाल किया गया, सौंफ का इस्तेमाल किया गया, इलायची का इस्तेमाल किया गया, सफेद तिलों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जनाब, जब इतनी सारी चीजें आपको एकदम से मिलती हैं तो आपका जिस्म तवाना होता है और आपकी सेहत मिलती है, तवानाई मिलती है, एनर्जी आपको मिलती है, दुखड़े आपके खत्म होते हैं और सुखों भरी जिंदगी में आप आ जाते हैं, क्योंकि केसन ताकत प्लस के हर घूंट के साथ आपको तवानाई मिलती है, जोश मिलता है।

0: ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांसवीन नशीला। हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन्फ यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।

0: Your music, your request.
1: This is Radio Station. Radio Aman.
2: इल्म आगाही, तंज़ो मज़ा और खुशहाली इस्तेहकाम का हसीन संगम। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डॉट

ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांस नशीला। हमारे साथ रहे, हमारे साथ।

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है, ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है, रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

रेडियो की लहरों पर भी करती हुई मेरी आवाज हर धड़कते दिल तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। सामीन इकराम, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। आपका मेजबान आरजे अंस अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से वेलकम जी आयन उपखैर आखले सत बिस्मिल्ला। बिल्कुल खवातीन हजरात, उम्मीद करता हूं तमाम सुनने वाले जहां कहीं भी होंगे सेहत वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंस रखे, मुस्कुराता रखे और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। उम्मीद करता हूं जनाब मेरी बहनें हैं, भाई हैं, मुझे जहां से भी सुन रहे हैं आप लोग बिल्कुल वेल एंड गुड होंगे और सेहत वाली जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि जनाब सेहत इंसान की जब तक बेहतर ना हो तो इंसान की जिंदगी में मजा नहीं रहता। सो सेहत आपकी जिंदगी में बेहद जरूरी है। सो जनाब अपनी सेहत का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चाहे आप जहां से भी हैं, चाहे आप टांग से सुन रहे हैं, चाहे आप मुझे वजीरिस्तान से सुन रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी जो किस्म की भी बीमारी है उसका तसली बख्श इलाज और शिफा दवाखाना पर किया जाएगा। सो वेलकम बैक लिसनर्स, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अल शिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली जो है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पेश किया जाता है। सो जनाब

0: 3195534 पर 03195523404 पर आप कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा जो दूसरा नंबर है पीटीसीएल नंबर 09635114888 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं. जनाब सो सेहत के हवाले से आपका कोई भी सवाल है आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं 03195523404 पर. और इंशाल्लाह आज की तरह कल भी अलशिफा दवाखाना सारा दिन खुला रहेगा. अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी. बिल्कुल जनाब जिसम रहम पुख्तना जमुंगदा प्रोग्राम अरबी जी सासो टोलता प्रोग्राम के हर खले वायमा ग्रान अरबिदुन को सेहत पैगाम सासो पर खिदमत के अलशिफा दवाखाने खसूसी तंसर पेश कहूँ. अगो खयान दे अगबरुना सुख चेत मुख्तलिफ व बीमारियानो चे गिर शिविरी मसलन द मेदी दर्दा द गुंडू दर्दू नदी द जड़ा मसाइल दे आय चीरे अजियाथे बीमारी विस्तासो इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी इलाज पाल शिफा दवाखानी बने कीगी. और ग्रान वारविदुन को अवल में हम सो फीरती दर तवील दी चे देसी तरीका इलाज आसान दे अरजान दे और बेजरर तरीका इलाज दे. अब बिल्कुल जनाब दे इच किस्म हम साइड इफेक्ट नस्ता चे सो के हम इस्तेमाल भी इंशाल्लाह बडी रखा और डेरा जबरदस्त रिजल्ट दे बल मिलावेगी. और इंशाल्लाह सबाब दवाखाना वाड़े ब्रज अखला से भी जनाब अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी के. तो बिल्कुल जनाब जितने मेरी भेड़िया बिरा में कुछ रह के सुन दे पेन तो आकू मैं प्रोग्राम ही वेलकम आदा अजड़ा के अलशिफा दवाखाना दे खसूसी तावन तुरी खिदमत पेश की तब यह यानी कि सेहत का पैगाम. बिल्कुल जनाब एक ऐसा प्रोग्राम एक ऐसी ट्रांसमिशन जिन्हें तुरी सेहत के हवाले गाल की वेंदी है सेहत के हवाले के कोई भी मसला है पिया तो तुसा हकीम साहब के पुछना चाहते हुए तो बिल्कुल जनाब तुसा कॉल कर सकते हुए 03195523404 के उत्ते. तो इसको अलावा इंशाला अज भी अलशिफा दवाखाना सारा नहीं खुला है तो इंशाला कल भी सारा नहीं खुला हो सी अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी. बिल्कुल जनाब तुरी सेहत के वस्ते हमेशा हाजिर हो सी तुरी खिदमत अलशिफा दवाखाना ते अलशिफा दवाखाना ते एक ऐसे काबिल तजर्बाकार हकीम मौजूद हैं जिन्हों को हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब आखा वेंदा है. बिल्कुल खवातीनों हजरात हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब जो कि देसी तिब के माहिर हकीम हैं और पिछले 30 साल से देसी तिब से वाबस्ता हैं. सो आप कब अगर देसी तरीका इलाज के बारे में आप जानना चाहते हैं आप देसी तरीका इलाज के करीब होना चाहते हैं सो बिल्कुल आप अलशिफा दवाखाना तशरीफ लाएं. सामिन इकराम देखें जो देसी तरीका इलाज है यकीन करें इसका कोई किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इंशाल्लाह आपको बहुत ही मौसर रिजल्ट इसका मिलता है. बाकी जितने भी तरीका इलाज हैं नाम तो हम नहीं ले सकते जनाब जो तरीका इलाज है वो आप मरते दम तक खाते रहेंगे उनकी दवाइयां यानी कि जब तक आप जिंदा हैं आप वो दवाई खाते रहेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो दब जाएगी. लेकिन देसी तरीका इलाज है देसी तरीका इलाज इस बात पे यकीन रखता है कि आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करना है. सो अगर आप भी अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कराना चाहते हैं वक्ती दवाइयों पर आप खर्चा कर रहे हैं तो इससे बेहतर है आप अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कराएं. सो बिल्कुल इसी हवाले से हम शो में बात किया करते हैं. जितने भी लिसनर हैं बहने हैं भाई हैं आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं 03195523404 पर कॉल करके SMS करके. सो हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब भी हमारे साथ ऑनियर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है. चलेंगे जी सेहत के सफर को भी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये शो आपके लिए होता है आपकी सेहत के हवाले से होता है. सो इस प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ फरमा होते हैं हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब जो कि आज भी हमारे साथ ऑन एयर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है. अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: हकीम साहब कैसे हैं ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक शुक्र.
0: आज का दिन कैसा रहा हकीम साहब आपका?
1: दिन माशाल्लाह ठीक ही रहा है.
0: चले माशाल्लाह. सो जी हकीम साहब ये बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल बुजुर्गों को भी हैं नौजवानों को भी है माओ बहनों को और तमाम जितने भी हमारे सामईन हमें सुन रहे हैं.
1: सही है.
0: सो आज का जो हमारा प्रोग्राम है मैंने बताया है कि आज हम किसी एक बीमारी पर बात नहीं करने वाले. आज का जो हमारा प्रोग्राम है जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं बहने हैं भाई हैं देखिए हकीम साहब अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है. सो अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिसको लेकर आप परेशान हैं कि मेरा मैदा जलन करता है ये क्यों करता है या मेरे आधे सर में दर्द होता है ये किस वजह से होता है इसके आगे क्या नुकसान होंगे अदर देन आपके और कोई भी सवाल हो सकते हैं आप हकीम साहब से पूछ सकते हैं. हाँ सवाल आपका सेहत के हवाले से होना चाहिए क्योंकि ये सेहत का शो है सेहत का पैगाम है तो आपका जो सवाल